0: किरण मेरी बात तो सुनो।
1: सुना जाकर अपनी चहेती को, मुझसे तुम्हारा क्या वास्ता, क्या उसी के पास? छोड़ दो मेरा हाथ, मैं कहती हूँ छोड़ दो, वरना
2: प्यार सच्चा हो तो ये वक्त भी रुक जाता है।
1: वक्त चाहे रुक जाए, मैं नहीं।

0: सुना था हसीनों के गुस्से से लोगों के होश आवाज उड़ जाते हैं, लेकिन आपके गुस्से से तो गाड़ी का पेट्रोल उड़ गया। देखिए उधर मत जाइए, रास्ता बहुत खतरनाक है, जंगली जानवर बहुत मिलते हैं।
1: हुआ करे, तुमसे ज्यादा खतरनाक तो नहीं होगा।
2: आ गए आपके कदमों पे उतर कर बादल।
1: जाओ जाओ, मुझे न बनाओ।

0: ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
1: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम। ताली भी बज जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

0: 89.1 FM, NTN Radio, the pulse of Guyana.
1: देख लिया कहां रहता हूं, जहां मौत जिंदगी पर हंसती है।
2: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
1: लेकिन कब, कैसे?
2: मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो।

0: जी का ये रूप नया है।
1: आंख को पड़ी पल के भारी समझा पुरुष जो देखी नारी।